0: बोल शंख, तुम्हारी ऐसे तैसे से ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर बंद करो इन नौटंकी। अरे मुंह का देख रहा है, किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कहकर बुलाओ बार बार, और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार, समझा के नहीं? नहीं देखी कपन ससुर मार दे तो पटाख से।
1: अरे